आइए सुनते हैं अगला गीत किशोर कुमार, लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में। इस गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीतकार है राजेश रोशन, फिल्म का नाम है खुद्दार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी का भव्य आयोजन किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
1: भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को दुल्हन की तरह सजाया गया है और हर तरफ रंग बिरंगी रोशनी की छटा बिखरी हुई है। इस अवसर पर लाखों श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर अभिभूत हो रहे हैं। यहाँ के प्रमुख मंदिर मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि, द्वारिकाधीश मंदिर, वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बिहारी जी मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की जबरदस्त तैयारियां हैं, जहां रात में जन्मोत्सव मनाया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देशवासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी हैं। केरलम में भी कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। विशेष मंदिर अनुष्ठान, भव्य शोभा यात्राएं और प्रसिद्ध अरनमुला वल्ला सद्य इस पर्व का हिस्सा हैं। भारत ने अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से GSLV F-17 रॉकेट से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने इस सफलता पर इसरो के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है। श्री मोदी ने कहा कि सफलता भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने सफल प्रक्षेपण की सराहना की। इसरो अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा। अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज भारत और फ्रांस के बीच अंतरिक्ष कार्यक्रम में सहयोग और प्रगाढ़ करने पर चर्चा की। इस दौरान मानव सहित अंतरिक्ष उड़ान, एडवांस स्पेस टेक्नोलॉजी और दोनों देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों तथा उद्योगों के बीच बेहतर तालमेल पर चर्चा हुई। डॉक्टर सिंह ने फ्रांस

0: उच्च शिक्षा अनुसंधान और अंतरिक्ष कार्य मंत्री फिलिप बैप्टिस्ट के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से द्विपक्षीय बैठक की। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू हुआ। सर्वोच्च न्यायालय इस सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भारतीय देशों के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायिक प्रमुख और वरिष्ठ न्यायिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने 7 राज्यों को न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सिक्किम, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल राज्यों को संबंधित सेवा नियमों में संशोधन करके सेवानिवृत्ति आयु को औपचारिक रूप से 62 वर्ष करने का निर्देश दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल चेन्नई जाएंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति वॉल्व संबंधी संरचनात्मक हृदय रोगों के उपचार को बढ़ावा देने के लिए समर्पित राष्ट्रीय शैक्षणिक सम्मेलन इंडिया वॉल्व 2026 को संबोधित करेंगे। श्री राधाकृष्णन चेन्नई के गिंडी में इंडिया वॉल्व पंजिका का विमोचन भी करेंगे। नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या 1282 हो गई है। 5053 लोग लापता हैं। शवों की पहचान के लिए डीएनए जांच शुरू कर दी गई है। इस बीच भारत ने 2 और विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर 2 C-130J विमान काठमांडू पहुंच गए। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की पुरुष डबल जोड़ी का मुकाबला डेनमार्क के किम एस्ट्रप और एंडर्स स्कारूप रमसुसेन से होगा। ताजा समाचार मिलने तक दोनों जोड़ियों ने 1-1 गेम जीत लिया है। इससे पहले पुरुष सिंगल्स में किदांबी श्रीकांत को हांगकांग के ली चेक यू से हार का सामना करना पड़ा। लंदन स्क्वाश क्लासिक टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में आज अनाहत सिंह का मुकाबला मलेशिया के शिव संगरी सुब्रमण्यम से होगा। जूनियर विश्व चैंपियन अनाहत ने कल बेल्जियम के नेले गिलिस को 2-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में कल तक मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज कुछ स्थानों पर तेज वर्षा हुई। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। साथियों, एक बार फिर तराने नए पुराने कार्यक्रम के शेष भाग में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। वाजिद खान और साथियों की आवाजों में सुनिए समीर का लिखा गीत। संगीत है साजिद वाजिद का, फिल्म का नाम है रंगरेज।
2: आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित नेहा चौहान,
1: जो गन फॉर ग्लोरी शूटिंग एकेडमी है, गगन नारंग स्पोर्ट्स प्रमोशन फाउंडेशन, जो गगन नारंग जी है जो ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है, तो उन्होंने कहा कि कोई कोच हो तो आप बताइए। तो हम वहाँ पे गए और मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कोच बनूंगी कभी।
0: एक जीवन जो निशानेबाजी को समर्पित है।
1: स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऐसा खेल खेल के नेशनल में मैं सिलेक्ट हुई थी,
0: जिसने देश को दिए कुछ बड़े बड़े खिलाड़ी जिनकी निगाहें हैं गोल्ड मेडल पर।
1: गुजरात से जो खिलाड़ी हमारी बनी थी वो है इलेवन इलवालर इवन, जो एक अर्जुन अवार्डी है, दो बार ओलंपिक खेल चुके हैं, और अभी जो धनुष श्रीकांत है जो दो बार डेफ ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है, और बहुत सारे ऐसे एथलीट्स है, उमा महेश करके है, रमिता जिंडाल जो हरियाणा से है, जो पेरिस ओलंपिक्स में 2024 में शी वॉज इन टॉप 8।
0: एक मुलाकात द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित शूटिंग कोच नेहा चौहान से मैटिनी शो 5 सितंबर सुबह 11:30 पर सिर्फ विविध भारती पर।

अगली आवाजें हैं मोहम्मद रफी, किशोर कुमार और साथियों की। गीत लिखा है वर्मा मलिक ने, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, फिल्म का नाम है मुकाबला।

0: टेलीविजन के जाने माने नाम, जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
1: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ, वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है। वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं है।
0: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
1: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
0: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्युलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं अमित कुमार, शब्बीर कुमार, साधना सरगम और साथियों की आवाजों में। इस गीत को लिखा है इंदिवर ने, संगीत है राजेश रोशन का, फिल्म का नाम है काला बाजार।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को वो भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने। उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
1: जी।
0: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अगला गीत आप सुनेंगे कैलाश खेर, महुआ कामत और श्रद्धा पंडित की आवाजों में। गीत लिखा है निदा फाजली ने, संगीत है आदेश श्रीवास्तव का, फिल्म का नाम है देव।

0: रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
3: साथियों, कार्यक्रम तराने नए पुराने अब समाप्त होता है।
4: तराने नए पुराने।

विविध भारती से लीजिए सुनिए झरोखा के अंतर्गत हमारे आज के शेष कार्यक्रम और कल दिन भर में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। अब से बस कुछ ही देर बाद 6:35 पर आप सुनेंगे संध्या रंजन। 6:45 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सुनिए संगीत सरिता। 7:00 सुनिए फौजी साथियों के लिए कार्यक्रम जयमाला। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत अनमोल यादें, जिसमें आप सुनेंगे फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर से जयंत पात्रिकर की बातचीत का नवा भाग। हवा महल में आज सुनिए नाटिका हीरों का हार। 9:30 पर आज के फनकार, ये कार्यक्रम केंद्रित है

संगीतकार आदेश श्रीवास्तव पर। रात 10 बजे छाया गीत सुनिए पूजा के साथ। कल सुबह 6:05 पर वंदनवार और चिंतन। 6:35 पर श्री रामचरितमानस गान का भाग सुनिए 203। 203 संगीत सरिता इस कार्यक्रम में कल सुबह 6:45 पर स्वर साधना की अनुपम परंपरा में किराना घराना श्रृंखला का 5वां भाग। कलाकार है गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे। प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। इस कार्यक्रम को आप दोबारा सुन सकते हैं शाम 6:45 पर। भूले बिसरे गीत आपको सुनवाएंगे सुबह 7 बजे और 7:30 पर सुनिए कार्यक्रम हम है राही प्यार के। 8:15 पर त्रिवेणी कार्यक्रम का प्रसारण होगा। इस कार्यक्रम को आप दोबारा सुन सकते हैं दोपहर 2 बजे। प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। सुबह 8:30 और रात 8:15 पर सुनिए कार्यक्रम चित्रलोक। कल सुबह 9:30 पर सुनिए कार्यक्रम आज के फनकार। कल का ये कार्यक्रम केंद्रित है महान संगीतकार सलील चौधरी पर। प्रस्तुत करता है मनीषा जैन। कल दिन में 10 बजे पिटारा के अंतर्गत सुनिए सुनो कहानी में रश्मि वर्मा की लिखी कहानी आखिर कब तक। दिन में 11 बजे चित्रपट संगीत। ग्यारह बजकर 30 मिनट पर मैटनी शो में सुनिए द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित शूटिंग कोच नेहा चौहान से की गई यूनुस खान की बातचीत। संपादन सहायक रीमा जोशी। प्रस्तुत करता है जुबैर खान। आज की तरह कल भी 1 बजे हमारे साथ तय कीजिए संगीत का सफर। कार्यक्रम होगा सुरीला सफर। 2:30 पर सदाबहार नखमे। दिन में 3 बजे श्रोताओं के पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीत सुनवाए जाएंगे। कार्यक्रम मन चाहे गीत में। प्रस्तुत करता है तेजश्री कामले।

3:30 पर नाट्य तरंग कार्यक्रम में सुनिए नाटक आंख की किरकिरी का पहला भाग, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के बांग्ला उपन्यास चोखेर बाली का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण, निर्देशक है नंदलाल। दोपहर बाद 4 बजे पिटारा के अंतर्गत बॉम्बे टॉकीज में सुनिए गायिका दीपाली सहाय से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग, प्रस्तुत करता है तेजश्री कामले। शाम 5 बजे छाया गीत का पुनः प्रसारण होगा और 5:30 पर कार्यक्रम तराने नए पुराने। कल शाम 7 बजे सुनिए विशेष जयमाला में पार्श्व गायिका आशा भोसले को। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत आपको सुनवाएंगे जिज्ञासा में डॉक्टर योगिनी मोहरे से यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग। कल रात्रि 8 बजे हवा महल में आप सुनेंगे सुनो कहानी में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी पिंजर का पहला भाग, वाचन स्वर ममता सिंह का, प्रस्तुत करता है हर्षवर्धन गवई। 9:30 पर कार्यक्रम आज के फनकार, कल का ये कार्यक्रम केंद्रित है निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा पर, प्रस्तुत करता है रमेश गोखले। कल रात 10 बजे छाया गीत में सुनिए आरती श्रीवास्तव को, प्रस्तुत करता है राघवेंद्र सिंह नेगी। कल रात 10:30 पर कार्यक्रम ढलती जाए रात और 11 बजे कार्यक्रम होगा चित्रपट संगीत।

तो ये थी जानकारी आज के शेष और कल दिन भर में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की झरोखा के अंतर्गत। ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। संध्या रंजन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। लीजिए सुनिए मोहम्मद रफी और साथियों को। गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार हैं रवि। फिल्म का नाम है खानदान।

श्रोताओं, अभी आपने सुना मोहम्मद रफी और साथियों को। गीतकार थे शैलेंद्र, संगीतकार थे शंकर जयकिशन। फिल्म का नाम था बसंत बहार। अगला गीत सुनिए मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में। गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार हैं रवि। फिल्म का नाम है खानदान।

श्रोताओं नमस्कार। इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे। इनसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने।

0: आइए सुनते हैं आज इस श्रृंखला की चौथी कड़ी।
1: नमस्कार श्रोताओं, स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना श्रृंखला की इस कड़ी में आपका फिर एक बार स्वागत है और स्वागत है जानी मानी शास्त्रीय गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे जी का। शकुंतला जी,
2: हाँ जी,
1: किराना घराने की विशेषताओं की बात हो रही है, हम ये जो गायकी है किराना घराने की उसके ऊपर चर्चा हो रही है, तो आज कौन सी विशेषता है इस घराने की जिस पर आप हमें जानकारी देंगी?
2: श्रुति का जो हम सूक्ष्म और सटीक ऐसा प्रयोग करते हैं घराने
1: जी,
2: में
1: जी जी
2: एकदम सूक्ष्म अंतर श्रुति मालूम है आपको ना, दो स्वरों के बीच में
1: जी
2: जो स्वर जो हम देख नहीं सकते सुन नहीं सकते ऐसे जिस स्वर रहते
1: हाँ हाँ हाँ।
2: उसे हम श्रुति कहते हैं
1: जी।
2: सा और रे उसके बीच में, वैसे तो 22 श्रुति मानी गई है
1: हाँ।
2: सारे गम पधनी
1: हाँ।
2: उसमें लेकिन असंख्य है श्रुतियाँ
1: जी, जी।
2: ये नियमित रियाज और स्वर साधना उसको अत्यंत महत्व दिया जाता है
1: जी।
2: वैसे तो सब घराने में दिया जाता है लेकिन किराना घराने का जो रियाज है
1: हाँ।
2: उसको अत्यंत महत्व दिया जाता है। तो फिर श्रुति का सूक्ष्म और सटीक प्रयोग
1: हाँ।
2: इसके बारे में हम बोल रहे थे कि नियमित रियाज को स्वर स्थिर मधुर और प्रभावशाली बनता है
1: जी।
2: फिर श्रुति के सूक्ष्म अंतर की पहचान विकसित की जाती है, इससे गायन में गहराई निखार और भावपूर्ण अभिव्यक्ति आती है
1: जी।
2: स्वर में स्थिरता और नियंत्रण विकसित किया जाता है
1: जी।
2: लंबे लंबे आलाप और एक स्वर पर टिके रहने की क्षमता स्वर साधना से प्राप्त होती है। किराना घराने में स्वर साधना को सर्वोच्च महत्व दिया गया है। इस घराने की गायकी स्वर प्रधान मानी जाती है, जहां मेंड श्रुति और स्वर लगाव पर विशेष बल दिया जाता है।
1: अच्छा,
2: स्वर साधना केवल तकनीक नहीं बल्कि साधना और आत्मानुशन का एक माध्यम है।
1: अच्छा,
2: यही साधना कलाकार की गायकी को विशिष्ट पहचान प्रदान करती है।
1: बिल्कुल सही।
2: इसीलिए ये जो हम बोलते हैं उसका प्रत्यक्ष अनुभव हम लेते हैं जब हम गाना सुनते हैं। इसीलिए मैं नहीं जानती मैं कितना ये जो मैं बोलती हूँ उसके ऊपर न्याय दे सकूंगी, लेकिन मैं मेरी तरफ से प्रयास करूंगी।
1: तो कौन सा राग आपने चुना है?
2: अहिर भैरव।

0: वाह वाह, बहुत ही सुंदर। और इस बंदिश को सुनने के बाद राग अहिर भौरव पर आधारित विजेता फिल्म का गीत याद आ रहा है।
1: वाह क्या बात है,
0: जो आशा भोसले जी और सत्यशील देशपांडे के स्वरों में। आइए अपने श्रोताओं को सुनवा।

स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की चौथी कड़ी। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे, इनसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने, तबला संगत रोहिदास परब, हारमोनियम पर संगत दी ऋषित होनावरकर ने। श्रोताओं, इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी भावना सिंदल, संपादन सहयोगी झरना सोलंकी और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

ये विविध भारती है, हर दिल से जुड़ी देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम जयमाला आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

जयमाला कार्यक्रम सुनने वाले सभी फौजी साथियों को सलमा की ओर से प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। फौजी साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत हम लाए हैं आपके लिए। कविता कृष्णमूर्ति, मोहम्मद अजीज और साथियों की आवाजों में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और फिल्म का नाम है कर्मा।

चलते चलते। इस फिल्म का गीत सुनिए अभिजीत और अलका याग्निक की आवाजों में। गीतकार हैं जावेद अख्तर, संगीत है जतिन ललित का, फिल्म का नाम है चलते चलते।

0: फौजी साथियों, जयमाला कार्यक्रम में अब वक्त है एक छोटे से अंतराल पर जाने का। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए हर लम्हा हर पल देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।
1: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: अंतराल के बाद एक बार फिर से जयमाला कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। फौजी साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है अमिताभ बच्चन, अलका याग्निक, हेमा सरदेसाई, आदेश श्रीवास्तव और साथियों की आवाजों में। इस गीत को लिखा है समीर ने, संगीत है आदेश श्रीवास्तव का, फिल्म का नाम है बाग़बान।
1: It's Valentine's Day. Groove.

0: टेलीविजन के जाने माने नाम जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
1: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है, वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं है।
0: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
1: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
0: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्यूलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे

आइए सुनते हैं उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में श्याम राज का लिखा गीत। संगीत है आदेश श्रीवास्तव का, फिल्म का नाम है दहक।

साथियों, समय कम होने की वजह से ये गीत हम आपको पूरा नहीं सुनवा पाए। इस गीत में आवाजें थी अदनान समी, फाल्गुनी पाठक, सुखविंदर सिंह और साथियों की। इस गीत को लिखा था समीर ने, संगीत था आदेश श्रीवास्तव का और फिल्म का नाम था दीवानापन। फौजी साथियों, जयमाला कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: दोस्तों, आज के हवा महल कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं रमेश उपाध्याय की लिखी नाटिका हीरों का हार।
1: ओ, बड़े खुश दिखाई दे रहे हो आज, क्या बात है?
2: बात बहुत अच्छी है मितिलदा, सुनोगी तो खुशी से झूम उठोगी।
1: बताओ तो सही।
2: मैं क्या बताऊं, तुम्ही देख लो ये निमंत्रण पत्र।
1: निमंत्रण पत्र?
2: हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन की ओर से एक पार्टी है 18 जनवरी की शाम को।
1: बस इसीलिए इतने खुश हो रहे थे?
2: क्यों मितिलदा, तुम्हें इससे खुशी नहीं हुई? मैं तो समझता था कि तुम, मेरा मतलब है तुम्हें कभी कहीं आने जाने का मौका नहीं मिलता, इसलिए इस पार्टी में तुम्हें जरूर जाना चाहिए। पता है ये निमंत्रण पत्र मुझे कितनी मुश्किल से मिला?
1: मुश्किल से?
2: हाँ, ये कोई मामूली पार्टी नहीं है, स्टाफ के बहुत थोड़े लोगों को बुलाया गया है, इसलिए सभी इस कोशिश में थे कि उन्हें ये कार्ड मिल जाए।
1: तुमने बेकार ही इसके लिए कोशिश की।
2: क्यों, मैं तो तुम्हारे लिए ही ये कार्ड लेके आया हूँ, वहाँ चलकर बहुत से बड़े बड़े लोगों से मिल सकोगे।
1: पार्टियों में जाना और बड़े बड़े लोगों से मिलना, अपनी किस्मत में कहा।
2: क्यों, ऐसी क्या बात?
1: ऐसे पूछ रहे हो जैसे जानते ही नहीं। ऐसे शानदार मौकों के लिए मेरे पास बड़ी अच्छी अच्छी पोशाकें रखी है ना, जिन्हें पहनकर चली जाऊंगी।
2: क्यों, तुम्हारे पास वो फ्रॉक है ना, वही जब हम थिएटर देखने जाते हैं तुम पहनती हो, मुझे तो वो हमेशा बहुत अच्छी लगती।
1: हाँ, तुम्हें क्यों नहीं अच्छी लगेगी, लेकिन औरों से तो पूछो वे क्या सोचते होंगे।
2: क्या करूं मैं दिलदा,

0: मैं भी चाहता हूं कि तुम अच्छे से अच्छे कपड़े पहनो, लेकिन तुम जानो एक जूनियर क्लर्क की तनख्वाह ही कितनी होती है।
1: तो ठीक है, फिर क्यों कहते हो पार्टी में चलने के लिए? कपड़े अच्छे पहन भी लो, मगर जब तक कोई जेवर ना हो सब फीका लगता है। वहां सब औरतें गहने पहन कर आएंगी और मैं, इससे तो अच्छा है कि मैं नहीं जाऊं पार्टी में।
0: गहनों की जगह तुम फूलों से श्रृंगार कर लेना, इस मौसम में तो फूल बहुत होते हैं, 10 फ्रैंक में तो इतने शानदार गुलाब मिलेंगे।
1: रहने दो, मैं नहीं जाऊंगी, वहां इतनी अमीर औरतें आएंगी, उनके बीच मैं गरीब सी क्या अच्छी लगूंगी।
0: अरे हाँ, याद आया, वो तुम्हारी एक सहेली है ना?
1: कौन? फॉरेस्टियर?
0: हाँ हाँ, मादाम फॉरेस्टियर, वो तो बड़ी अमीर है, तुम उससे एक आध गहना मांग कर पहन लेना।
1: अरे वाह, खूब याद दिलाया, अब बन गया काम, मैं कल उसके पास जाऊंगी।
2: अरे मैथिलदा, तुम आओ आओ।
1: नमस्ते जीनी, कैसी हो तुम?
2: अच्छी हूँ, तुम सुनाओ, आज जीनी की तुम्हें याद कैसे आ गई? आओ बैठो।
1: मैं तुम्हारे पास एक काम से आई हूँ जीनी।
2: हाँ हाँ कहो, क्या काम है?
1: बात यह है कि मुझे एक पार्टी में जाना है, लेकिन वहाँ पहनकर जाने लायक मेरे पास कोई जेवर नहीं है, मैंने सोचा तुमसे मांग कर पहन जाऊँ।
2: हाँ हाँ, बड़े शौक से। ये लो, ये देखो, इनमें से तुम्हें क्या पसंद है, देखो लो।
1: अरे वाह, तुम्हारे पास तो बहुत से गहने हैं।
2: लो देखो, ये ब्रेसलेट तुम्हें पसंद है?
1: नहीं, ये नहीं।
2: और ये मोतियों की माला?
1: ये तुम्हारे पास और कुछ नहीं है?
2: है क्यों नहीं, लेकिन तुम अपनी पसंद भी तो बताओ, आखिर तुम चाहती क्या हो?
1: तुम कुछ और गहने दिखा दो, मैं छांट लूंगी जो मुझे चाहिए।
2: अभी लो, ये लो, ये देखो।
1: देखो, ये रहा, ये हार जीनी, इसे पहनकर पार्टी में चली गई तो बस।
2: बस फिर तो तुम ही तुम दिखाई दोगी इस पार्टी में, क्यों?
1: सच जीनी, बड़ा ही खूबसूरत हार है ये तो, कितना अच्छा लग रहा है।
2: तो इसे ही ले जा, पहले बता देती कि मुझे हार चाहिए तो मैं।
1: अच्छा जीनी, मैं चलूं।
2: फिर कब आएगी?
1: हार लौटाने तो आऊंगी ही।
2: अच्छा।
0: आज तो तुमने कमाल कर दिया मैथिलदा, पार्टी में बस तुम ही तुम दिखाई दे रही थी, आज मैंने तुम्हें जितना खुश देखा है उतना कभी नहीं देखा। खैर चलो, अब कपड़े बदल लो और सो जाओ, रात बहुत हो गई।
1: अच्छी बात है।
0: क्या हुआ?
1: हार, मैडम फॉरेस्टर का हार कहीं खो गया।
0: क्या कहा? हार खो गया? ऐसा कैसे हो सकता है? अपने कपड़ों में देखो।
1: नहीं, कहीं नहीं है। ओह, क्या होगा?
0: जब तुम पार्टी से लौटी थी तब था तुम्हारे पास?
1: हाँ हाँ, हॉल में मैंने उसे छू कर देखा था।
0: लेकिन गली में कहीं गिरता तो आवाज सुनाई देती, शायद टैक्सी में रह गया।
1: यही हो सकता है। सुनो, तुम्हें टैक्सी का नंबर याद है?
0: नंबर? नंबर कैसे याद होगा, मुझे क्या पता था?
1: अब
0: ये
1: क्या
0: सब
1: होगा, फॉरेस्टर को तो हार वापस करना ही होगा।
0: ठहरो, मैं ऐसा करता हूँ, तुम्हें रास्ता दिखाता हूँ जहाँ से हम पैदल आए।
1: जाओ जाओ, जल्दी करो, कहीं किसी और के हाथ में पड़ जाए।
0: अच्छा,
1: और सुनो, पुलिस स्टेशन में चले जाना रिपोर्ट लिखाने के लिए।
0: और मेरा ख्याल तो ये है कि हार में विज्ञापन भी है, हार लाने वाले को कुछ नाम दिया जाए।
1: जाओ जल्दी करो।
0: अच्छा, तो जा
1: रहा हूँ। सुनो, कुछ पता लगा?
0: कुछ पता नहीं लगा, समझ में नहीं आता क्या करें।
1: ओहो, न जाने कैसी बुरी घड़ी में वो हार लिया था, लेकिन कुछ तो करना ही होगा। ऐसा करें, कोई दूसरा हार खरीद कर दे दें उसी जैसा।
0: न जाने कितने में आएगा।
1: चलो मालूम कर लेते हैं।
0: किससे?
1: उस हार का केस मेरे पास है, उस पर दुकानदार का नाम लिखा है, उसे चलकर पूछते हैं, उसी जैसा मिल गया तो खरीद लेंगे।
0: चलो देखते हैं, वो केस अपने साथ ले लो।
1: अच्छा, आओ चलो।
3: आइए साहब, आइए मैडम, क्या सेवा करूं आपकी?
0: जी हमें एक हीरों का हार खरीदना है।
3: जरूर जरूर, आइए इधर आकर देखिए। वैसे किस तरह का हार चाहिए आपको?
1: सुनिए, हमें एक खास तरह के हार की तलाश है, वो हार आपकी दुकान से ही खरीदा गया था। देखिए,

0: है वो केस जिसमें हार गया था? इस पर आपकी ही दुकान का नाम लिखा है।
1: बेशक मेरी ही दुकान का है, लेकिन ठहरिए जरा, मैं अपने बिक्री खाते में देख लूं कैसा हार था। आप बैठिए तो सही, मैं अभी देख लेता हूं। अरे भाई वो रजिस्टर उठाना जरा। हाँ ये नहीं, ये भी नहीं।

0: भी नहीं, इसमें भी नहीं। हाँ ये रहा ये रहा। लेकिन साहब इसमें तो सिर्फ केस की बिक्री दर्ज है। मेरा मतलब है हमारे यहाँ से सिर्फ ये केस खरीदा गया है, हार नहीं। हार शायद कहीं और से लिया गया होगा।
1: अच्छा, माफ कीजिए आपको तकलीफ थी।
0: जी नहीं, कोई बात नहीं, आप ही की दुकान है।
1: धन्यवाद
2: धन्यवाद।
1: लो, सारा बाजार तो छन मारा, कहीं वैसा हार नहीं मिलता। अब
2: सुनो, अभी एक दुकान और है पैलेस रॉयल में।
1: लेकिन वो तो बहुत छोटी सी दुकान है, उसमें क्या
2: चल कर देख लेने में क्या हर्ज है। कभी कभी छोटी दुकानों पर भी ऐसी चीजें मिल जाती हैं, और दुकान भी तो दूर नहीं है। वो रही, आओ ना देख लेते हैं।
1: चलो मिथिलदा।
2: हाँ
1: मिथिलदा, इधर देखो, ये हार है ना बिल्कुल वैसा ही।
2: अरे हाँ सचमुच बिल्कुल वही। जरा पूछो तो कितने का है।
1: सुनिए जनाब,
3: फरमाइए
1: ये हार कितने का है।
3: कौन सा ये?
1: हाँ, जी हाँ जी हाँ
3: जी, इसकी कीमत है 40,000 francs।
1: 40,000 francs?
3: इसमें आश्चर्य की क्या बात है साहब, असली हीरों का हार है, इमिटेशन तो है नहीं।
1: लेकिन 40,000 francs तो बहुत होते हैं साहब।
3: आप तो कीमत देख रहे हैं। चीज भी तो देखिए।
2: कुछ कम नहीं कर सकते आप?
3: देखिए मैडम, हमने इसके साथ के कई हार बेचे हैं, 40,000 से बिल्कुल कम नहीं। अब ये आखिरी बच गया है, आप चीज देख लीजिए और खुद ही बताइए।
1: देखिए, मुंह मांगे कीमत की बात छोड़िए, हार तो हमें खरीदना ही है।
3: तो फिर एक बात बोलूं?
1: बोलिए।
3: फिर उसके आगे एक फ्रैंक इधर ना एक फ्रैंक उधर।
2: जी हाँ जी हाँ, हम कोई मोल भाव करके अपना वक्त बर्बाद करने तो आए नहीं है।
3: तो फिर 36,000 francs, इससे ज्यादा ना कम।
2: क्यों लाए सर, क्या ख्याल है?
1: ठीक है, लेकिन देखिए जनाब, बात यह है कि हमारा इसी तरह का एक हार खो गया है। हम उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, आप 6 दिन तक इसे रोके रहिए। अगर हमारा हार मिल गया तो हम आपको बता देंगे, और अगर नहीं मिला तो 36,000 देकर खरीद ले जाएंगे।
3: ओहो, बड़े दुख की बात है कि आपका इतना कीमती हार खो गया। खैर कोई बात नहीं, मैं 6 दिन तक इसे किसी को नहीं बेचूंगा।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
3: धन्यवाद की क्या बात है मैडम, हम तो आप लोगों की सेवा करने के लिए ही बैठे हैं। वैसे मुझे ये सुनकर सचमुच दुख हो रहा है कि आपका हार खो गया।
1: कोई बात नहीं, हमें आशा है कि हमें 1 हफ्ते में मिल जाएगा वो।
3: 1 हफ्ते में ना भी मिले और आप इस हार को खरीद भी ले जाएं, तो मैं एक मौका आपको और दे सकता हूं।
2: वो क्या?
3: मान लीजिए आपका हार इस हफ्ते नहीं मिला और आप इस हार को खरीद ले गई
1: जी,
3: और बाद में आपका भी हार मिल गया
1: जी,
3: तो मैं इसे वापस ले लूंगा।
1: जी बहुत अच्छा।
3: लेकिन
1: जी
3: पूरी कीमत में नहीं, 34,000 में, क्योंकि साहब आखिर हमें भी जिंदा रहना है।
2: कोई बात नहीं, ये ठीक है, 2,000 देकर 34,000 बचाना कौन नहीं चाहेगा भला। धन्यवाद
3: धन्यवाद, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा।
1: अवश्य।
3: नमस्कार।
1: मिथिलदा, 36,000 कहाँ है अपने पास?
2: कैसे भी हो कुछ तो करना ही पड़ेगा। सुनो, तुम्हारे पास कुल कितने फ्रैंक हैं?
1: तुम तो ऐसे पूछ रही हो जैसे तुम्हें मालूम ही नहीं। मेरे पिताजी जो 18,000 छोड़ गए थे, उनके सिवा मेरे पास कुछ नहीं।
2: तो 18,000 का तो इंतजाम करना है, करना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं।
1: लेकिन सोचो तो मिथिलदा, मान लो 18,000 francs मैंने कर्ज ले लिया, लेकिन जिंदगी भर इस कर्ज से पीछा नहीं छूटेगा।
2: तुम चिंता मत करो, मैं मेहनत करूंगी, कम से कम खर्च में हम लोग गृहस्थी चलाएंगे।
1: ओहो, मेरी समझ में नहीं आता।
2: इसमें समझ में ना आने की क्या बात है, नौकरानी को हम लोग निकाल देंगे, इस मकान को छोड़कर कोई सस्ता सा मकान ले लेंगे, घर का सारा काम मैं खुद करूंगी।
1: तुम?
2: घर का काम होता ही कितना है, घर की सफाई, खाना बनाना, बर्तन साफ करना, और हाँ कपड़े भी धोबी से धुलवाने के बजाय मैं खुद धोऊंगी। तुम चिंता मत करो, कर्ज चुकाने में मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी।
1: उन सस्ते मकानों में जहाँ मजदूर लोग रहते हैं तुम रह लोगी? उन मकानों में पानी तक तो बाहर से लाना पड़ता
2: है। मैं सब कुछ कर लूंगी, तुम कर्ज तो ले लो। सुनो, तुम भी अपनी आमदनी बढ़ाने की कोशिश करना।
1: करनी ही पड़ेगी, मैं कल से ही कहीं पार्ट टाइम काम शुरू कर देता हूँ।
2: तो फिर चलो, वो हार ले आए।
1: लेकिन मिथिलदा, हम चाहें जितनी मेहनत करें, 18,000 का कर्ज
2: 5 साल 10 साल 15 साल इससे ज्यादा तो नहीं लगेंगे कर्ज चुकाने में। चलो भी, देखा जाएगा, आओ।
1: चलो।
2: वक्त कहां से कहां पहुंचा देता है इंसान को। काश

0: गरीब मजदूर की बीवी या नौकरानी जैसी लगती हूँ।
1: अरे ये तो फॉरेस्टियर है चीनी, वो ये अभी तक उतनी ही सुंदर है। 10 साल इसके ऊपर से भी तो गुजरे हैं, लेकिन जीनी, जीनी, नमस्ते जीनी।
2: मैं आपको पहचान नहीं सकी।
1: पहचान नहीं पाई? अपनी मैथिल्दा को नहीं पहचानती?
2: मैथिल्दा? तुम मैथिल्दा हो?
1: हाँ।
2: तुम इतनी कैसे बदल गई?
1: हाँ जीनी, मैं पिछले 10 वर्षों से बड़ी ही मुसीबत में दिन काट रही हूँ।
2: क्यों, क्या हुआ?
1: सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ जीनी, और आज तुम्हें मुझे पहचानने में भी दिक्कत हो रही है।
2: मेरी वजह से? क्या मतलब?
1: जीनी, तुम्हें याद है?
2: हाँ हाँ।
1: आज से 10 साल पहले मिनिस्ट्री ऑफ इंस्ट्रक्शन में एक पार्टी हुई थी और मैं तुमसे एक हीरो का हार मांग कर ले गई थी।
2: हाँ याद है, अच्छी तरह से याद है मैटिल्डा, लेकिन उससे क्या?
1: मुझसे वो हार खो गया था।
2: खो गया था? लेकिन तुम तो तीसरे ही दिन उसे लौटा गई थी।
1: जो हार मैंने तुम्हें लौटाया वो दूसरा था जीनी, उसे खरीदने में हम पर बहुत कर्ज हो गया, 40,000 फ्रेंक। लेकिन शुक्र है अभी एक एक पाई चुका दी गई है।
2: हे भगवान, तुम्हारा मतलब है कि तुमने मेरे हार के बदले हीरो का हार खरीदा?
1: हाँ, तभी तो।
2: ओ,
1: क्या हुआ?
2: तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया मैटिल्डा? मेरा हार तो नकली हीरों का हार था।
1: क्या?
2: उसकी कीमत तो मुश्किल से 500 फ्रैंक थी।
1: सच?

हवा महल कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे रमेश उपाध्याय की लिखी नाटिका हीरों का हार। निर्देशक थे सत्येंद्र शरत। ये थी आकाशवाणी दिल्ली की भेंट। अब आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।

प्रस्तुत है नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रलोक। सभी सुनने वालों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत हम लाए हैं आपके लिए आदेश श्रीवास्तव और वसुंधरा की आवाजों में।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी ना कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: लीजिए सुनिए उदित नारायण को। संगीत है आदेश श्रीवास्तव का और फिल्म का नाम है दिल तेरा दीवाना।

0: अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। चित्रलोक कार्यक्रम की अगली पेशकश आप सुनेंगे सोनू निगम और आदेश श्रीवास्तव की आवाजों में। गीत को लिखा है समीर ने, संगीत है आदेश श्रीवास्तव का, फिल्म का नाम है जोरू का गुलाम।
1: टेलीविजन के जाने माने नाम जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
2: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है, वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं है।
1: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
2: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्यूलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
3: घोड़ी चढ़ के बांध के सहरा उसके घर में जाऊंगा, सच कहता हूँ राम कसम मैं जोरू उसे बनाऊंगा।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को वो भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने। उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
1: जी।
0: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: संगीत सरिता कार्य

0: सारे
1: आमंत्रित कलाकार हैं।
2: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
3: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
1: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला
2: स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना
1: सुबह और शाम
2: 6:45 पर
1: सिर्फ विविध भारती पर।
4: साथियों चित्रलोक कार्यक्रम की अगली पेशकश आपको सुनवाते हैं सोनू निगम की आवाज में। नगमा निगार है नुसरत बद्र, संगीत है आदेश श्रीवास्तव का और फिल्म का नाम है दीवार।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: इसके साथ ही कार्यक्रम चित्रलोक समाप्त होता है। सुनिए, सुनाइए और सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। विविध भारती से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू। न्याय वितरण और विवाद समाधान से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। कहा, भारत इटली संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत हुए। विदेश मंत्रालय ने बताया, नेपाल बाढ़ के बाद अब तक 166 भारतीय नागरिक बचाए गए, 275 अब भी लापता। बिहार में सभी प्रमुख नदियां उफान पर होने से बाढ़ की स्थिति गंभीर, प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी। जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स सेमीफाइनल में पहुंचे। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में ब्रिक्स सदस्य देश और सहयोगी देशों के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी भाग ले रहे हैं।
1: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज रूस, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान सहित कई देशों के न्यायिक प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों में देशों के बीच न्यायिक सहयोग को मजबूत करने, न्यायपालिका की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को एकीकृत करने, तेजी सैनिक प्रक्रियाएं पूरी करके लोगों के बीच संबंध बेहतर करने और अलग अलग देशों के बेहतरीन कानूनी तौर तरीकों पर चर्चा की गई। यह सम्मेलन न्यायपालिकाओं के लिए न्याय प्रदान करने, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने, मौजूदा मुद्दों पर चर्चा करने का मंच है। अनुपम मिश्र के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने 7 राज्यों को न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।

0: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्य बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सिक्किम, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल राज्यों को संबंधित सेवा नियमों में संशोधन करके सेवानिवृत्ति आयु को औपचारिक रूप से 62 वर्ष करने का निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने ये शर्त रखी है कि 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके न्यायिक अधिकारियों को 62 वर्ष की आयु तक सेवा जारी रखने की अनुमति मिलने से पहले संबंधित उच्च न्यायालय के योग्यता और प्रदर्शन मूल्यांकन से गुजरना होगा। न्यायालय ने इन राज्यों में इस वर्ष 31 मार्च को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए न्यायिक अधिकारियों के लिए भी सीमित अवसर खोला ताकि वे न्यायिक सेवा में पुनः प्रवेश के लिए आवेदन कर सकें। सर्वोच्च न्यायालय ने इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 2 सप्ताह के भीतर इस मुद्दे पर निर्णय लेने और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि भारत इटली संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत हुए हैं। श्री मोदी ने इटली के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सरकार का नेतृत्व करने के लिए प्रधानमंत्री मेलोनी को शुभकामनाएं दी थीं। प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली दोनों महाद्वीपों के बीच रिश्ते मजबूत करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि दोनों देश भारत, मध्य पूर्व, यूरोप आर्थिक गलियारे को विकसित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का ये कॉलेज भारत के प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थानों में से एक है। यहां कॉमर्स, अर्थशास्त्र और प्रबंधन के क्षेत्र में विशिष्ट शिक्षा दी जाती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नेपाल बाढ़ के बाद अब तक 166 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं को बताया कि 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं। उन्होंने कहा कि भारत नेपाल में पुनर्निर्माण और राहत कार्यों में लगातार सहयोग कर रहा है।
6: We have extended our solidarity and support to the government and people of Nepal.
7: हमने नेपाल सरकार और वहाँ की जनता के प्रति अपनी एकजुटता और समर्थन व्यक्त किया है। एक करीबी मित्र और साझेदार के रूप में भारत ने तुरंत सहायता पहुँचाई और हम नेपाल के पुनर्निर्माण और राहत के प्रयासों में लगातार सहयोग करते रहेंगे।
6: And recovery efforts in the country.
1: श्री जायसवाल ने कहा कि मंत्रालय बचाए गए भारतीयों के नाम नियमित रूप से जारी कर रहा है।

0: उन्होंने कहा कि 1907 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और चीन से नेपाल पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में कोई भी भारतीय यात्री फंसा नहीं है। श्री जायसवाल ने कहा कि आने वाले दिनों में भारत नेपाल सरकार के अनुरोध पर और अधिक फॉरेंसिक किट, बेली ब्रिज और अन्य सामग्री भेजने की योजना बना रहा है। नेपाल में भीषण बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 1287 हो गई है। नेपाल पुलिस के अनुसार चितवन में सबसे अधिक 359 लोगों की मौत हुई। इसके बाद नवलपरासी पूर्व में 218, नवलपरासी पश्चिम में 208, नुवाकोट में 185, रसुआ में 140, गोरखा में 72, धाडिंग में 60 और तनहू में 38 लोगों की मृत्यु हुई। काठमांडू के अस्पतालों में इलाज के दौरान 2 और लोगों की मृत्यु हुई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और पोलैंड साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष, स्वच्छ ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में कई समझौतों पर काम कर रहे हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इन समझौतों से द्विपक्षीय संबंधों में अधिक गहराई और मजबूती आएगी। वॉर्सो में आज पोलैंड के उप प्रधानमंत्री राडोस्लाव सिकोरस्की के साथ वार्ता के बाद डॉ जयशंकर ने ये बात कही। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख द वेवर ने कहा है कि बेल्जियम भारत के साथ समुद्री सहयोग को मजबूत करने की दिशा में काम करेगा। उन्होंने बताया कि बेल्जियम से समुद्री और पत्तन क्षेत्र का प्रतिनिधिमंडल अगले वर्ष फरवरी में भारत आएगा ताकि इस क्षेत्र में ठोस कदम उठाए जा सकें। श्री वेवर आज मुंबई में भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर भारत बेल्जियम उच्च स्तरीय वार्ता को संबोधित कर रहे थे। भारत ने अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट से पृथ्वी अपलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने इस सफलता पर इसरो के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है। श्री मोदी ने कहा कि ये सफलता भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताएं दर्शाती है। इसरो अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: ये आकाशवाणी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने आज डिजिटल अरेस्ट के 3 बड़े मामलों में देश भर में कार्रवाई की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ब्यूरो ने ऑपरेशन चक्र 6 के अंतर्गत 3 लोगों को हिरासत में लिया।
3: देश भर में लगातार बढ़ रहे डिजिटल अरेस्ट के मामलों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए देश के 20 राज्यों में 89 स्थानों पर छानबीन का अभियान चलाया गया। इस ऑपरेशन की योजना बहुत सावधानी से बनाई गई थी। राजस्थान के जालसाज ने 7,67,00,000 रुपए, गुजरात के जालसाज ने 19,24,00,000 रुपए और राजस्थान के ही एक अन्य जालसाज ने 15,45,00,000 रुपए की धोखाधड़ी की। एजेंसी ने डिजिटल अरेस्ट के संगठित अपराध से निपटने का संकल्प भी दोहराया। यह ऐसी समस्या है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी देश भर के नागरिकों के लिए गंभीर खतरा बताया है। अभिनव की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं हिमांशु कांडपाल।
0: जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आज बडगाम जिले में एक आतंकी को मार गिराया। सेना के प्रवक्ता ने बताया कि क्षेत्र में आतंकियों की खुफिया जानकारी मिलने के बाद सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने अभियान शुरू किया। मुठभेड़ में मारे गए आतंकी से एक राइफल और गोला बारूद बरामद हुआ। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जन्माष्टमी का पावन पर्व पूरे गुजरात में भी धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है।
4: द्वारका के जगत मंदिर में फल, दाल चावल, मिठाई और 56 भोग के खास प्रसाद के चढ़ावे के साथ जन्माष्टमी मनाई जा रही है। मंदिर और पुलिस अधिकारियों ने भक्तों के लिए बैरिकेडिंग, CCTV सर्वेलेंस और ड्रोन मॉनिटरिंग जैसे इंतजाम किए हैं। डाकोर के राजा रणछोजी मंदिर में सजावट आरती के दौरान मंदिर परिसर में भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। दूसरी ओर अहमदाबाद के इस्कॉन और भारत के हरे कृष्ण मंदिर समेत कई कृष्ण मंदिरों में जन्माष्टमी के मौके पर युवाओं ने खास रास लीला का आयोजन किया।

0: बंकी, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, केरलम में भी जन्माष्टमी का पर्व धार्मिक उत्साह और भक्ति के साथ मनाया गया। श्रीनगर में कश्मीरी पंडितों ने हब्बा कदल से गणपत्यार मंदिर से लाल चौक तक शोभा यात्रा निकाली। कुलगाम के वेसु क्षेत्र में कश्मीरी पंडितों ने भी जन्माष्टमी के अवसर पर रंगारंग झांकी और शोभा यात्रा निकाली। बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि गंगा, पुनपुन, गंडक, बूढ़ी गंडक, सोन और कोसी सहित सभी प्रमुख नदियों का जल स्तर बढ़ रहा है।
2: पटना, भोजपुर, भागलपुर और पश्चिम चंपारण समेत बिहार के 16 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से राहत और बचाव कार्य चलाए जा रहे हैं। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 9 और एसडीआरएफ की 27 टीमों की तैनाती की गई है। प्रभावित परिवारों के बीच राशन का वितरण किया जा रहा है। साथ ही बाढ़ प्रभावित इलाकों में स्वास्थ्य विभाग की टीमें कैंप कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने पटना में अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों के साथ साथ राहत और बचाव अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। सविता पारीख, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क के किम एस्ट्रुप और एंडर्स स्कारूप रासमुसेन को 21-13, 16-21, 21-18 से हराया। इससे पहले पुरुष सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत को हांगकांग के ली चेक यू से हार का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा की चेतावनी दी है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न हिस्सों में आज हल्की से तेज वर्षा हुई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू। न्याय वितरण और विवाद समाधान से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। कहा, भारत इटली संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल बाढ़ के बाद अब तक 166 भारतीय नागरिक बचाए गए, 275 अब भी लापता। बिहार में सभी प्रमुख नदियां उफान पर होने से बाढ़ की स्थिति गंभीर। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी। और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम आपके लिए में सभी सुनने वालों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत हम लाए हैं आपके लिए शैलेंद्र सिंह की आवाज में। गीतकार है आनंद बख्शी, संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और फिल्म का नाम है बॉबी।

आइए सुनते हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में वो गीत जिसे लिखा है गुलशन बावरा ने। संगीत है राहुल देव बर्मन का और फिल्म का नाम है ये वादा रहा।

0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
1: भीगी भीगी रातों में, मीठी मीठी बातों में।
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। नगमा निगार है मजरू सुल्तानपुरी, धुन है राजेश रोशन की और फिल्म का नाम है दूसरा आदमी।

ये विविध भारती है और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। तो अगला गीत है आपके लिए किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। इस गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने, संगीत है राहुल देव बर्मन का, फिल्म का नाम

हर रोज शाम सुनिए सदाबहार हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम छाया गीत, जिसके प्रायोजक है विको वज्रदंती, मजेदार नहीं असरदार, भारत का गम एक्सपर्ट।

अगला गीत आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार की आवाज में। इस गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने, तर्ज है राहुल देव बर्मन की, फिल्म का नाम है जहरीला इंसान।

साथियों, कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश आपको सुनवाते हैं कंचन और शैलेंद्र सिंह की आवाजों में। गीत को लिखा है गुलशन बावरा ने, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का और फिल्म का नाम है रफू चक्कर।

साथियों, कार्यक्रम आपके लिए अब समाप्त होता है। सलमा सैयद को दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखना ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने की गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।

आज एक ऐसा कलाकार जिसने कई फिल्मों में बैकग्राउंड संगीत दिया, कई फिल्मों में गाया और बहुत सी फिल्मों के संगीतकार रहे। 1990 और 2000 के दशक के एक लोकप्रिय कलाकार का जिक्र है आज। आइए सबसे पहले रूना लैला के साथ इनका गाया फिल्म अग्निपथ का ये गीत आपको सुनवाएं।

इस कलाकार ने फिल्म सैलाब में बैकग्राउंड म्यूजिक दिया था। आइए इस गीत को भी सुन लें।

शाहरुख खान रानी मुखर्जी अभिनीत 2003 की चलते चलते फिल्म में संगीत जतिन ललित और आदेश श्रीवास्तव का था। फिल्म संसार में कटनी मध्य प्रदेश से आए आदेश का जन्म 4 सितंबर 1964 को हुआ था। आदेश ने शुरुआत में आरडी बर्मन, राजेश रोशन जैसे संगीतकारों के साथ एक ड्रमर की हैसियत से काम किया, फिर एक स्वतंत्र संगीतकार के रूप में आपने अमिट छाप छोड़ी। राजनीति फिल्म का उनका संगीतबद्ध ये गीत बहुत लोकप्रिय हुआ। आइए सुनते हैं आदेश श्रीवास्तव की आवाज में ये गाना।

एक सफल संगीतकार रहे हैं आदेश श्रीवास्तव। अपने संगीत के करियर में आपने 100 से अधिक फिल्मों में संगीत दिया है। फिल्म मेजर साहब का है ये गाना।

आदेश श्रीवास्तव का विवाह जतिन ललित और अभिनेत्री सुलक्षणा पंडित की अभिनेत्री बहन विजेता पंडित से हुआ। बात 1993 की है, जब आदेश श्रीवास्तव को एक बड़ा ब्रेक फिल्म कन्यादान के लिए मिला। लता मंगेशकर ने इनका संगीतबद्ध गीत उदित नारायण के साथ गाया था, जो लोकप्रिय हुआ, पर यह फिल्म और इसके बाकी के नगमे उतने नहीं चले। फिलहाल ओ सजना दिलबर कन्यादान का ये गीत हम आपको सुनवाते हैं।

जैसा कि हमने कहा कि कन्यादान फिल्म के गीत बाकी के नहीं चले या उतने लोकप्रिय नहीं हुए, ऐसा ही फिल्म जाने तमन्ना के साथ भी हुआ। इसके गीत भी उस तरह से नहीं लोकप्रिय हुए जैसा उनको होना था, जैसी उम्मीद आदेश को थी। लेकिन आदेश ने इन असफलताओं से हार नहीं मानी। बाउंस बैक करते हुए इन्होंने जिस फिल्म में अपनी पुनः वापसी की उसकी चर्चा करेंगे, जरूर करेंगे। लेकिन फिलहाल 2004 की फिल्म दीवार के गीत के साथ आइए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं।

सन 1994 की बात है। फिल्म आई आओ प्यार करें। आदेश श्रीवास्तव अपने श्रोता दर्शकों के बीच मधुर कर्णप्रिय संगीत के साथ

सलमा पे दिल आ गया। ये फिल्म और शस्त्र के गीत ने दर्शकों को आकर्षित तो किया, लेकिन शस्त्र के इस गीत ने विशेष ध्यान खींचा। क्या अदा, क्या जलवे तेरे पारू।

आदेश श्रीवास्तव ने कई हिट गाने गाए, जैसे सोना सोना, शावा शावा, गुस्ताखियां। फिर कुंवारा के गीतों के माध्यम से फिर एक बार सफलतापूर्वक पहुंचा आदेश का संगीत, जिसे दर्शकों ने सराहा। ये गाना है फिल्म आंखें का, आदेश श्रीवास्तव और वसुंधरा की आवाज में।

0: जैसा कि हम जानते हैं, एक गायक संगीतकार के साथ साथ एक अभिनेता के रूप में भी आदेश श्रीवास्तव ने अपनी पहचान बनाई। 1992 की अंगार में इनका एक्टिंग डेब्यू हुआ था और 1991 की फिल्म प्रहार में आपने एक रोल अदा किया था, छोटा सा वायलिन वादक बने थे आप। सन 2016 की मराठी फिल्म फैमिली कथा में भी आपने काम किया। वैसे तो इस बहुमुखी प्रतिभा के धनी कलाकार का अपने साथियों के साथ मित्रतापूर्वक व्यवहार रहा ही होगा, पर कहते हैं कि अमिताभ बच्चन के साथ आदेश श्रीवास्तव के संबंध काफी अच्छे रहे। आइए सुनते हैं कभी खुशी कभी गम का ये गाना।
1: जी बादशाह की देख रहे हो तुसी, चलो शुरू हो जाओ। 1 2 1

आदेश श्रीवास्तव की आखिरी फिल्म थी जिसमें आपने म्यूजिक स्कोर किया था वेलकम बैक, जो इनके जन्मदिन 4 सितंबर 2015 को रिलीज हुई थी। और 5 सितंबर को कैंसर ने आदेश श्रीवास्तव को संगीत प्रेमियों से यकायक छीन लिया। ये क्षति अपूर्णीय है, लेकिन उनका संगीत और उनकी शख्सियत श्रोता, दर्शकों और करीबियों के बीच एक याद बनकर हमेशा रहेगी।

0: आज के फनकार, ये कार्यक्रम केंद्रित था गायक संगीतकार आदेश श्रीवास्तव पर। आलेख और स्वर जी श्याम का और प्रस्तुतकर्ता थे रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओपी नैयर।
1: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओपी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता। आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है

0: वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ नहीं।
1: ऐसी अद्भुत यादें।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गड्डी ले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। छाया गीत के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: छाया गीत के प्रायोजक है वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: प्रस्तुत है छाया गीत। छाया गीत सुनने वाले सभी श्रोताओं को पूजा नारायणिया का नमस्कार।
1: वो जब याद आए,
0: किसी की याद इतनी गहरी होती है कि आंखें बंद करो तो सामने वही चेहरा उतर आता है। यादों का दर्द भी उतना ही गहरा होता है। वो हंसी सुनाई देती है, वो बातें याद आती हैं, दिल फिर उसी बीते हुए पल में लौट जाता है। समय आगे बढ़ जाता है मगर मन वहीं ठहरा रह जाता है जहां आखिरी बार साथ थे। ये रिश्ते खत्म होकर भी खत्म नहीं होते, यादों में सांस लेते रहते हैं। और यादें रात की खामोशी में एक दर्द भरी धुन बन जाती हैं।

उसके जाने के बाद भी जैसे घर की दीवारों पर उसकी आहट ठहरी हुई है। हर शाम दरवाजे की ओर देखता ये मन, जाने क्यों आज भी उसकी राह तकता है। बहुत कुछ कहना था उससे, मगर शब्द होठों तक आकर लौट गए। अब वही अधूरी बातें रातों में साथ जागती हैं, और उसका इंतजार धीरे धीरे एक गीत बनकर भीतर गूंजता रहता है।

उसके बिना सब कुछ तो है, मगर फिर भी कुछ भी पूरा नहीं लगता। आंगन वही है, मौसम वही है, जान भी वही है, बस उसे देखने वाली आंखों में अब पहले सी चमक नहीं। कभी लगता है उससे बिछड़कर उसे नहीं, अपने भीतर का एक हिस्सा खो दिया है। जो बातें उससे करनी थी, अब वह होठों की खामोशी में कैद है। और यही अधूरापन हर रात दिल से एक नया गीत लिखवाता है।

0: विरह की सबसे गहरी आवाज खामोशी ही होती है, जिसमें कोई शिकायत नहीं होती। फिर भी हर सांस किसी दर्द की कहानी कहती है। मन बार बार पूछता है, क्या उसे भी कभी महसूस होती होगी? क्या किसी शाम उसका दिल भी अचानक उदास होकर याद करता होगा? इन अनकहे सवालों के बीच सिर्फ तन्हाई एक जवाब बनकर सामने आ बैठती है।
1: ओ शाम कुछ

दिल जानता है कि बीता हुआ पल लौट कर नहीं आता, फिर भी आंखें किसी चमत्कार की उम्मीद करती हैं। कभी लगता है अचानक वो सामने आ जाएगा और कहेगा, मैं वापस आ गया हूँ। लेकिन फिर यह मन अपनी ही कल्पना पर मुस्कुरा देता है और आंखें चुपचाप भीग जाती हैं। प्रेम में किसी को भूलना उतना मुश्किल नहीं होता जितना उसके लौटने की उम्मीद को छोड़ना होता है।

उम्मीद कभी थकती नहीं, आंखें पथराने लगती हैं, चांदनी रातें भी और गहरी होती जाती हैं। आखिरी मुलाकात की हर बात उम्र भर के लिए दिल में याद बनकर रह जाती है। उसका आखिरी बार मुड़कर देखना आज भी आंखों में एक मंजर की तरह ठहरा हुआ है। तब कहां पता था कि वह पल हमारी कहानी का आखिरी पन्ना बन जाएगा। काश उस पल को वहीं रोक लेते हम, काश आज साथ होते हम।

गीत का आज का सफर आपने तय किया पूजा नारायणिया के साथ। छाया गीत के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। अब आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

0: संगीतकार उत्तम सिंह, एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
0: उजाले उनकी यादों के।

0: एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ
1: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे।

कुदरत छुपा सकता नहीं। कितनी दिलकश है मोहब्बत की जवान,

0: ढलती जाए रात। समाचार के साथ में मोहम्मद जुबैर। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में ब्रिक्स सदस्य और सहयोगी देशों के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी भाग ले रहे हैं।
1: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज रूस, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान सहित कई देशों के न्यायिक प्रतिनिधि मंडल के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों में देशों के बीच न्यायिक सहयोग को मजबूत करने, न्यायपालिका की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को एकीकृत करने, तेजी सैनिक प्रक्रियाएं पूरी करके लोगों के बीच संबंध बेहतर करने और अलग अलग देशों के बेहतरीन कानूनी तौर तरीकों पर चर्चा की गई। यह सम्मेलन न्यायपालिकाओं के लिए न्याय प्रदान करने, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने, मौजूदा मुद्दों पर चर्चा करने का मंच है। अनुपम मिश्र के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि भारत इटली संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत हुए हैं। श्री मोदी ने इटली के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सरकार का नेतृत्व करने के लिए प्रधानमंत्री मेलोनी को शुभकामनाएं दी थी। प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली दोनों महाद्वीपों के बीच रिश्ते मजबूत करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि दोनों देश भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को विकसित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का ये कॉलेज भारत के प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थानों में से एक है। ये कॉमर्स, अर्थशास्त्र और प्रबंधन के क्षेत्र में विशिष्ट शिक्षा केंद्र है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नेपाल बाढ़ के बाद अब तक 166 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं को बताया कि 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं। उन्होंने कहा कि भारत नेपाल में पुनर्निर्माण और राहत कार्यों में लगातार सहयोग कर रहा है। श्री जायसवाल ने कहा कि मंत्रालय बचाए गए भारतीयों के नाम नियमित रूप से जारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि 1907 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और चीन से नेपाल पहुंच चुके हैं। नेपाल में भीषण बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 1287 हो गई है। नेपाल पुलिस के अनुसार चितवन में सबसे अधिक 359 लोगों की मौत हुई है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द वेवर ने कहा है कि बेल्जियम भारत के साथ समुद्री सहयोग को मजबूत करने की दिशा में काम करेगा। उन्होंने बताया कि बेल्जियम से समुद्री और पत्तन क्षेत्र का प्रतिनिधिमंडल अगले वर्ष फरवरी में भारत आएगा ताकि इस क्षेत्र में ठोस कदम उठाए जा सकें। श्री वेवर आज मुंबई में आयोजित भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर भारत बेल्जियम उच्च स्तरीय चर्चा को संबोधित कर रहे थे।

विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और पोलैंड साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष और स्वच्छ ऊर्जा सहित महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में कई समझौतों पर काम कर रहे हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इन समझौतों से द्विपक्षीय संबंधों में अधिक गहराई और मजबूती आएगी। वार्सो में आज पोलैंड के उप प्रधानमंत्री रादोस्लाव सिकोरस्की के साथ वार्ता के बाद डॉ जयशंकर ने ये बात कही। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने आज कहा कि नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट फेस्ट इस क्षेत्र की जीवंत संस्कृति, रचनात्मकता और युवाओं का उत्सव है। नई दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स फेस्ट के 9वें संस्करण को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह पहल अब एक राष्ट्रीय मंच बन गई है जहां युवा भारतीय उस विविधता का जश्न मनाते हैं जो उन्हें खास बनाती है और उन साझा बंधनों का भी जो उन्हें एक दूसरे से जोड़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव आज देशभर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि जन्माष्टमी का पावन पर्व पूरे गुजरात में भी धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।